फिर भी गंगा माया बुढ़ा सखी का आवाज में सजी को निके मीठो लोकप्रिय श्लोक सुन्न भयो। वहां आज यह धरती में हुनुहुन्न, वहां को आवाज हामी सुन्दै छ, वहां को आत्मा को चिर शांति को कामना करूं। श्रोता, हाम्रो प्यारो जन्मभूमि, हाम्रो प्यारो संस्कृति, हाम्रो भूगोल।

सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

में मैं बाहर लड़े हो टोगा खोलना बंदे जो आप धोखे छोड़े दिन्छु सोचे दुख दिन्छु यार मैं तो बाहर लड़े दिन्छु दुनिया से मर बाहर

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले रजियो।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म पत्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 मे 22 तारिक ज्येष्ठ 8 गते शुक्रबार खष्टी तिथि अब स्तुति गरौं।

बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजाब भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को।